इच्छण ज्योतिपाल इदसम से तिस्साई सिट इदसम से असु हत दक्वा जीवत तुनत श्रीलंका सिनेमा गीते अमरनीय राजू लेस सलकन जान हुर्दे द अमरनीय म गायक ओगे मुर्दु सुवंद देन सत्वा बावे पिरुनु हंडे श्रीलंका संगीते असम सम सटानक तबुआ सिनेमा गीत तुंदागर अधिक प्रमाण गायना कल ओहु ओब माहट दुन सेनेस सांद की निसंद की मगे रामन के ओबट मगे आदरवेन गीत अद जनप्रिय ओगे हंडट तिबू सुवंद संवेदी सत्य मनुष्य के में पिरुनु जनता ओगे सिद्धि नागत्ता रूपवाहिनी सिनेमा वेदिका संगीत सेलुम शेस्त्र वल सुविशेषी सटान ओतबा तिबेनो ज्योतिपाल के गीत असन विट अदट सितट सोयक मतक सुवंदक सह अमरणीय संगीत रसयक लभिनवा

टोनी हसन श्रीलंका संगीत सा हिंदी जनप्रिय संगीत विशेष स्थानीय जनाद्रेट आदरणीय गायक ओगे सतटुमत नर्तन में वेदिका सजीवीकरण गायन शैली निशा ओगे बाइला सा अनिकुत गीत लोक प्रसिद्ध नाम बहुत पस्तुना इदस नम से हत्यावत असुअ दशके बाइला संगीत नव शब्द सा सजीवीकरण गिना कलाकार ओगे गीत वोट तिबू सरलत्व सतुट सा जनता समग सृजु संबंध निशा ओगे गायन विशेषात्व गता उत्सव विवाह सा सतुट अवस्था वल ओगे गीत अदत अनिवार्य वादने वेनो सिंगल संगीत जनप्रिय कल पायनियर्स अतरट ओगे गी नमद अतुलत वेनो टोनी हसन गे संगीत अदत जीवमान सतुट नर्तने सा श्रीलंकीय श्वास मतकरण अमरणीय हांडा

सुनील शांत दस नंबर से पहले पता लगा दस नंबर से आसुग के साधारण विनोद के श्रीलंका संगीती पुरोगामी अतिशय गाउरोवेट पात्रों संगीत अन्य कुछ सह गायक और श्रीलंका संगीत देते स्वदेशीय राशे नव सुरवीम सह निर्माण सीलत्व गिना आए सिंगल संगीत ते स्वदेशीय हंडक नव मम्पेतक सह सत्य राशे गिना प्रमुख कलाकार ओगे गीत सरल गैंबुरु संवेदिसा श्रीलंकीय संगीते महदोत्तर लंगावन रस्यक्गिनेनवा संगीत अध्यापने गीत निर्माणे सा सुरवीम तुल ओगे दायकत्व श्रीलंका संगीते इतिहासे विशाल सटाना कला सुनील शांत के गीत अदत असनविट श्रीलंकीय संगीते सत्य रसे निर्माणशीलत्व सा सौंदर्य तावमत जीवमानाई

एंटन रोड्रिगो श्रीलंका बायला सा जनप्रिय संगीत विशेष स्थान गत जन हृदय आदरणीय गायक ओगे सतटुमत नर्दनमय वेदिका व सजीवीकरण गायन शैली निशा ओ बायला लोके अमरणीय नामक बहुत पत्तुना हत्या व असुव दशके बायला संगीत नवरसज्ञना जनप्रिय गायक मेनिके मालिकावे सीनिमल्ली मलमेनिके वेनी जनप्रिय बायला गीत ओगे नामे समग संबंध उना ओगे गायन शैली सरल सतुटु सा जनताव समग सुदु संबंधक एतिकल विलासितावकिन पिरी तिबुना उत्सव विवाह अवस्थावलदी पवा ओगे गीत अनिवार्य वादने उना एंडन रोड्रिगो संगीते अदत जीवमान सतुट नर्तने सा श्रीलंकीय बायला रसे मतक्रोण अमरणीय हंडाक